0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ। गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: 阿米小白呼吸上刷了大头等你吧
1: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
2: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

0: गुड न्युज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुत तेज रोकाको साथमा।

0: दाई त कुन एफएम सुन्दैछ?
1: म गुड्डु गुड्डु न्यूज एफएम सुन्दैछु।
0: गुड्डु गुड्डु न्यूज होइन के, गुड न्यूज एफएम।
1: गुड न्यूज एफएम 105 थोप्लो थोप्लो थोप्लो 1 मेगाहर्ज सुन्दैछु क्या?
0: होइन, थोप्लो थोप्लो मेगाहर्ज होइन क्या, 105 थोप्लो 1 मेगाहर्ज।
1: ए हो र, 105 थोप्लो 1 मेगाहर्ज हो, म त मर्छु कि क्या हो।

0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ,
2: दैनिक आत्मिक कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ।
3: परमेश्वरले ढोका बन्द गर्नुहुँदा कृतज्ञ रह